0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670 मोबाइल नम्बर 98-460-56-238
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।

0: सुनिए, इन्हें जानते हैं आप? फादर पीटर दयाल।
1: वो रहे सामने।
2: माई नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन।
3: वेल डन आरव, हमारे इस कन्फेशन वीडियो के हेल्प से कैन इजीली पुट अ स्टे ऑन अ सेंटेंस।
4: वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। विल बी अ फ्री मैन सून आरव।
3: सेंड मी राइट अवे।
0: जी।
5: द एंटायर विलेज वुड बेयर विटनेस टू दिस।
6: आरव, सेंड इट आउट।

0: I just don't get you, Arav. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो?
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, तुम देखना एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।
0: I don't get you, man.
1: अपूर्वा, गाड़ी रोक।
0: क्या हुआ?
1: स्टॉप द कार प्लीज।
0: What happened?
1: खुशबू,